अब जैसे भी है तेरे बंदे हैं, तुझे छोड़ के हम गंदे जाए कहा। डोंट डिप्राइव अस ऑफ द शफात ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस आवर डीड्स। हमारी खबासत, हमारी नजासत, हमारी गिलाजत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से महरूम मत फरमा। विद मुबारक हैंड्स ऑफ रहमतुल आलमीन, विद मुबारक हैंड्स ऑफ रहमतुल आलमीन, ब्लेस अस विद जामे कौसर। After which there will be no thirst on the day of Qiyamah. Without any reckoning enters into Jannat, crosses over Pulsirat like lightning, protect us from the azab of Qabr, azab of Hashr. Bless us with your Didar in Jannat. Jannat, my beloved Allah, bless us with sight on your countenance, when the veils will be removed, when the veils of Noor will be removed. Ey Rabbe Kareem, make us amongst those who will be able to see you like how we see the full moon in this world.

सभी कुछ है मगर जब वो नहीं कुछ भी नहीं हासिल. पर्सन कैन हैव वेल्थ, ही कैन हैव प्रॉपर्टीज, ही कैन हैव एसेट्स, ही कैन हैव हेल्थ, ही कैन हैव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड गोइंग फॉर हिम. बट योर नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम्स मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम्स लव इज नॉट इन हिज लाइफ, नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम्स इश्क इज नॉट इन हिज लाइफ, नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम्स इताअत इज नॉट इन हिज लाइफ, देन नथिंग इज इन हिज लाइफ. He hasn't attained anything. And the other meaning that if the person has seen everything in the world, but he hasn't seen the Rauza Mubarak of Nabi alayhi salatu wasalam, then he hasn't seen anything. So many people, America, China, Japan, France, England, everywhere they go, up and down, up and down. You ask the person, if you go to Makkah Sharif, Madina Sharif, have you made Hajj? He said, no. Have you made any Umrah? No. So then the person hasn't seen anything. He can see the world, tourist attractions. But if he hasn't seen Rasul-e-Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam's Rauza Mubarak, then he hasn't seen anything.

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल जलालहू।

तेरी बरकत से आई सैयदुल मुरसलीन, तेरी बरकत से आई सैयदुल मुरसलीन, सुबह रोशन हुई कैफ शाम आ गया, मैं जहां नात अहमद सुनाने लगा, मैं जहां नात अहमद सुनाने लगा, आशिकों का वही इज़्तिहाम आ गया, जब जुबान